उजी जो हार चल बैठल हर रंगी की दाव में उधर सुनी उंगर उन्नरन थोर बन थोल्डन अर का मारा गाचन उधर बोलचे अर का मारा गाचन उधर बोलसन थोल्डन Alın yangını çok ılağa da ınudinin dolağı yat belden katılanı yangını hil.